0: ये जो बाकी गाड़ी है ना जिंजवाड़ा, वो भी एक रानी है।
1: हाँ।
0: वो थोड़ा अभी डिसफंक्शनल है, इसलिए हमारी गाड़ी उधर पोस्ट हुई।
1: तो आप जिन फैमिलीज को सर्व करते हो, अगर या फैमिलीज को, अब उनको मदद नहीं मिलेगी आपसे?
0: वो मैम वो क्या होता है, वो पीएचसी तक जा सकते, ऐसा ऐसा इन्होंने कहना ऊपर से।
2: The staff tell us diversions like this are common.
3: मैं आपको बता रहा हूँ, एक दो महीने में 10 के 15 ऑर्डर है हमारे एक ही वाहन के। ये वैन है स्पेशल अगरियाओं के लिए, तो खाली नाम अगरियाओं के लिए। इसको किसी भी किसी एमएलए का फंक्शन हुआ, किसी का भी गवर्नमेंट ने किसी ये ध्वज वंदन होता है राष्ट्रीय मतलब कुछ भी हो, इसमें उसका ऑर्डर कर देते हैं। जो इसके लिए है उसको लाभ कुछ नहीं है।
2: The Gujarat government says it has assigned 12 mobile health units to serve Agarias through the salt season. As we cross the desert, a salt worker flags down the van asking for help. But just as the doctor gets out to assist, he receives an urgent phone call.
0: Rathod charo mati main kidu tu
4: hello
0: peche ma jo ke ne bacche hame patient jo tha ne hame record karu kitlo upar rasta ma ache
4: वो रोक रहे थे, पर अब हम ऊपर से फोन आया कि आपको उधर पहुंचना ही पड़ेगा। नहीं फटाफट चला दो, अब क्या है, रोकता नहीं, फटाफट चला दो।
2: When we arrive at the temple, only a small number of patients seek treatment. None appear to be salt workers. Even organizers here acknowledge that there's a severe shortage of services for Agarias.
5: આ પ્રસંગ પતી ગયા પછી રણમાં અગરિયાઓની આ લોકો સેવા કરે એમાં અમે વાંધો નથી, પણ અમારી એક એવી રજૂઆત છે કે જે ઝીંઝુવાડા ગામની જે ગાડી ફાળવેલી છે એ છેલ્લે 6 મહિનાથી અમદાવાદમાં રિપેરિંગ પડી છે, અને એના કારણે અગરિયાઓને જે સુવિધા મળવી જોઈએ મળતી નથી.
2: એઝ વી લીવ ધ વાન્સ ડ્રાઈવર ચિંતન પુલ્સ અસ અસાઇડ.
3: મેં આયા 17 સાલ હોય, સ્ટાફ પૂરા કભી ભરાઈ નહીં. આપ દેખતે હો તો અંદર સે રોના આતા હે કે એસે આદમી ઇતને हमारे देश के लिए, हमारे लिए इतना मीठा, जो खाने में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ चाहिए, मीठू, मीठा नहीं होगा तो खाने में मज़ा नहीं आएगी। वो हमारे लिए इतना करता है तो हम उसके लिए कुछ कर नहीं पाते, मतलब हमारे हाथ में नहीं है।
2: To find out how widespread this problem is, we travel about 100 kilometers to Gujarat's west coast, where thousands more workers harvest salt. At a health clinic in the region, we join Dr. Prajapati.
6: आपको वहाँ पे जाके outreach करना है, यूनिटी के साथ काम करना है, ठीक है? चलो.
2: Today, Dr. Prajapati's team is vaccinating children living in the salt pans. Their first patient is this 10-month-old baby.
7: बस, thank you.
6: तो ये केस में क्या, इनका 9 महीने तक यहाँ पे रहते हैं, तो हम जहाँ जब भी आते हैं तो इनको हम सर्विस भी दे पाते हैं, उनका हेल्थ एजुकेशन भी कर सकते हैं, और इनको जो भी प्रॉब्लम है वो हमें बता सकते
2: हैं। At another settlement, they treat a man with a severe skin infection.
8: तातर की वजह, रोजू की वजह।
6: वो खंजोड़ा हुआ तुमने?
8: खंजोड़ा हुआ ना
9: उठा।
6: क्या क्या चाहिए? बेहतम चाहिए?
8: बेहतम।
6: बताओ।
2: Doctors say prolonged exposure to salt can leave workers with chronic skin infections, cracks, burns, and painful lesions.
6: હવે તમને દવા આપું, તમે રેગ્યુલર કરજો, એનાથી ફરક ના પડે તો એકવાર પીએચસી આવજો, પીએચસી મીઠી દો, કાં તો પછી ચામડીના ડોક્ટરને એકવાર બતાવવું પડશે.
2: Other common complaints include chronic pain, deteriorating eyesight and reproductive health complications. But the doctor says there's only so much he can do.
6: वो हमारे पास स्टाफ की शॉर्टेज है नहीं, रिसोर्सेज कम बढ़ रहे हैं, वो थोड़ा इश्यू है रहता है। हाँ, ऑलमोस्ट हर जगह पे इश्यू है ये।
2: Shortly after the storm, we visit Kishan's family again. His son Rudra is preparing for an important exam.
10: आपका सबसे अच्छा वाला सब्जेक्ट विषय कौन सा है?
11: गणित।
10: जब आप रण में होते हो,
11: हाँ।
10: पढ़ाई करने में मुश्किल होती है?
11: हाँ, यहाँ लाइट नहीं होती इसलिए दीवे से करना पड़ता है, पर पवन लगता है तो दीवा भी उलझ जाता है इसलिए।
2: Watching Rudra study brings back difficult memories for Kishan.
12: दुख बहुत होता है कि अगर आज मैं, मेरे बाबा मेरे को पढ़ाते लिखाते तो मैं ये मेहनत

0: मेहनत नहीं करता। और मेहनत करना हर इंसान को ज़रूरी होता है, मेहनत करने से कोई वो नहीं है, लेकिन जो पढ़ाए लिखे होते हैं उनको मेहनत तो करनी पड़ती है लेकिन कलम से होता है, और ये मेहनत नहीं है, ये मजदूरी है।
1: पगला ना एमना तरफ बढ़िया।
2: द नेक्स्ट मॉर्निंग रुद्र गेट्स रेडी फॉर स्कूल। इट्स ओनली अ शॉर्ट वॉक अवे फ्रॉम द फैमिलीज हट। This desert was declared a wildlife sanctuary in the 1970s to protect the endangered Indian wild ass. That makes it difficult to build permanent infrastructure here. So, the Gujarat government has set up about 2 dozen bus schools for Agariya children.
3: ધોરણ 6 થી 8 નું હિન્દી નું પેપર છે, પ્રશ્નોના જવાબ સારી રીતે લખીશું.
2: But advocacy groups have repeatedly warned the schools suffer from teacher shortages.
1: वहाँ अलग अलग साहिब होते हैं जो 1 से 8 तोरों को बनाते हैं, और वहाँ अच्छे से समझाया जाता है और दर एक विषय में, और यहाँ घड़िए और ऐसा आते विषय पे नहीं आते।
2: देर आर नो डेजर्ट स्कूल्स फॉर ओल्डर चिल्ड्रेन।
3: महसूस होता है कि ये इन बच्चों में भी कुछ IQ पावर अच्छा होता है कुछ बच्चों में, लेकिन उनको पूरी तरह से गाइडेंस न मिलने के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते।
2: Far from the bus schools and salt fields, some traders have built large fortunes from the salt harvested by the Agariyas.
4: तब पाटिया हार छाप करता नहीं हो, जो पाटिया हमारे एकदम चोखा छाव जी एक तो उड़न है असल।
5: और ये सब बैग कहाँ जा रहे हैं सर?
6: ये यूपी में, एमपी में।
5: ये सब आपका है?
6: सब यहाँ से, ये दीवाल से वहाँ लास्ट तक मेरा है, करीब 10,000 चौरस मीटर की जगह है।
2: Hingor Bhai is one of the biggest traders in the area. He pays advances to as many as 100 families each season. For him, the storm hasn't been entirely bad for business.
6: Namak ka production kam hota hai to demand zyada rehti hai. To aaj ke samay mein demand achhi hai. Pura area dher ban jayega. Kareeb 17-18 lakh ton namak yahan banta hai.
2: Last year, Hingor Bhai and other traders opened a processing plant to meet rising demand for packaged salt. Today, he's inspecting the production line with his factory manager.
7: ये इस तरीके से अपना 1-1 किलो पैकिंग होता है। इन 13 मशीनों में पर मिनट 60 पाउच की कैपेसिटी रहती है मैक्सिमम।
2: Most Agariyas never sell directly to the companies whose brands appear on supermarket shelves. Instead, their salt typically passes through middlemen.
7: अभी तो अपने पास मान लो एक ब्रांड है, कभी 10 ब्रांड हो तो सब पे इसके भी आपके जो दोनों मिलेगा।
2: Workers say they are often paid less than half a cent for each kilogram of salt they harvest by hand. Once packaged, the same salt can sell for up to 35 cents a kilogram. But when asked whether rising profits mean traders should pay Agariyas more, Hingor Bhai says the responsibility lies elsewhere.
6: जो अगरिया कल्याणकारी योजना का फंड है वो सही ढंग से सरकारी मैनेज नहीं करती। यदि सरकार मैनेज करती तो उनको शिक्षण का, आरोग्य का, उनके बच्चे के जो भी सुविधा है वो ज्यादा दे सकते।
2: Back in the desert, families like Kishan's are still waiting for help.
0: ચલો હવે આપણે દાબે જઈએ, બરોબર? અહીંયા મીટિંગ રાખેલી છે. સબસે મુશ્કિલ જિંદગી આગરિયા કી હે યહાં ગુજરાત કે અંદર, લેકિન સરકાર કુછ કરતી નહીં. યે કુછ પતા નહીં ચલતા, હર બાર એસા, હર સાલ એસા હોતા હે, લેકિન આજ તક સરકાર કુછ કરતી નહીં. અબ ઇસ બાર ભી મીટિંગ હે, અબ મીટિંગ મેં હમ જા રહે હૈ, અબ દેખતે હૈ કે ઇસ બાર સરકાર કુછ કરતી હે યા નહીં કરતી.
8: આગરિયા ભયો કેવા મનાત કરતા મજૂરી અને રણ વચારે ગુજારો કરતા એ આવ મેઘ રે એ રાજાનો થયો ટાંડો અરે રે કઈક તો નું છે અમારા આશુ.
2: The meeting has been organized by a group advocating for Agariya rights. Harinesh Pandya and his team have travelled from Ahmedabad, Gujarat's largest city.
9: अगर दूसरे कोई traditional occupation में ऐसा disaster आता,